0: जया है। साईराम, आर यू वेटिंग फॉर समवन?
1: साईराम सर, आई एम प्रशांत। मेनी इयर्स अगो यू मे बाल विकास गुरु।
0: प्रशांत, प्रशांत, लुक एट यू मैन, ऑल ग्रोन अप। हाउ आर यू? हाउ आर योर पेरेंट्स?
1: विद स्वामीज ग्रेस, आई एम गुड सर। पेरेंट्स आर फाइन टू।
0: वेरी नाइस। कम ऑन, लेट्स कैच अप। माय हाउस इज नियर बाय।

बड़ा चित चोरा वृंदावन संचारा बड़ा चित चोरा वृंदावन संचारा गोपाला गोपाला हे मुरली गोपाला गोपाला गोपाला गोपाला गोपाला हे

औरों को जो भी मिला वो उनके मुकद्दर से मिला है, औरों को जो भी मिला उनके मुकद्दर से मिला है, पर मेरा तो मुकद्दर भी

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य

0: शाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं।
1: तानसेन रामनाम संकीर्तन चेयंडी।

आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन घन ये कराम भक्त जन जीवन घन ये कराम

सो साई विठल भजो विठल भजो साई विठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो परतीवासा साई देव विठल।